0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म संपर्क नंबर 98573301।
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोप्लो।

0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98573301
1: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी पञ्चान

0: आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 98576301।
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: आयोजक दीदी बहनी ने जहाँ हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म संपर्क नंबर 98573301।
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 98573301।
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: तीन महीना तीर्नु होस्,
2: यो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
3: अहिले रातिको ठीक 8 बज्यो।